0: और मैं पाचू।
1: ईटी विनो और रेडियो ईटी विनो ईबीबी काय और रेडियो के कैन यम ये करे वेर क्वारो
0: मार मैं पाचू।
1: ईटी विनो और रेडियो यम चुन करे वेर क्वारो
0: यम चुन करे वेर क्वारो
1: बीमार मैं पाचू
2: यू आर लंग यू बीडो टेल
1: ETV Winyo or Radio.

0: और मैं पाचू
1: इटी यूनो और रेडियो
2: लांगो इंडिजिनस हिप हॉप
3: डील रैपर हिल फ्रॉम अगर कैन यू गो माइक मैकालो की जाना ले